दौंत बिडाऊए एने नेना नेना एम्बली अपने मसीओ देना ओ नेने उत्तो बिडाऊए ओ थाया हेने नेहरुए तु दाई ना गदी तु तेरने तु बिडाऊए दाई थायाती मिंदराए व हशेना व अपका तिसीने तो नरेनी दी मरहनीए दरेन उत्तो बिडाऊए आकना उन ओफना वबरो एकतेना वबरियो नशाते का बेकतीनो बुन पाशुदा इने बोदोर रावा का बेकतीन ओन हेने नमसे तो न तो अधीदा ने दे तित्ते मारिक इंग्लिश तो बिडाऊए वो इंग्लिश हो मोटट्टा ने तिम बतियो मीन कहना तो अधीदा ने ओन इंग्लिश ए अन हो ओन हाश ओत मंदिग ना हुआ उड़ेशु वही है ने तो बिडाऊए कस्तू गत्ती फी ओन मारिक मीन का ना टाइट तिके तो साहिल टाइट तिके तमाई ती टाइट तिके अंडरती टाइट तिके तिरंकिता ते टाइट तिके अवेंती टाइ तिके उसोकी टाइ तिके तो करती टाइ तिके तित्ति मनाते कम बते कस्तियो तो बिडाऊए वो इंग्लिश इमोटन बेदोर ने ने नाती इंग्लिश उनो दोर तुम्हारे कशुमा ईदे ओफना दाया ईदे मुरब्बा यदने न इदे मुरब्बा ना ना तो तिंदिये फड़क कोते तित्ति जाते ई क्लिप उनो देशो है इसाके उन्दा आप उनो रबे हुआ एगाडे हुआ उजुआ इतित साके उनु मुरब्बा उम्बारो तित्ति मारिक ती ती सकियाने कस्तो उनु आलामी सकियाने ती मारिक ते मसे उम्बारो उनु मुरब्बा तक्की इकता तो बिडावी उनु मुरब्बा फड़िक मीनं केतात तमाईती हुआ हंडूबे हुआ इन याशिं बरे कस्यो उमुरब्बा फड़िक दोरा केतात बे नो दोर उमुरब्बा तिकते उम इंग्लिज अरे शायर लबीब तका ए आप इक्तियब इबरे मीन कौनो तक ए ये का तित्ते मारिक हुआ ओफना हुआ इंग्लिस दायो उन इंग्लिस का काफी करा है उनो तक उन ओदर इंग्लिस बा का काफी मियादी भाई आप इक्तीने उत्तु बिडाऊए ते गत ते मारिक रियानो उत्तु बिडाऊए हुआ ओफनायो ना हुआ वबरो ना हुआ थायातो ना हुआ रियानो गसीदे तो इक्ते दाईत गसीदे अल्फेज वेजी इदनेत उम्बतो हो इक्तिब उम्बतियो ओनु तक गुदा वाले दाई तुबड़ा वेतिव दिया मारिक तिरेना धई रेना फिना भरेना कसे ने हत्तन कस्तो उम्बतो राब आकई कस्तो तु सकना ने ओनो उफनो दाना ने कसो अन आंदा इंबारा उत्तु बिडावी ईदने इफीजुईजे अंबारा शलक मीनानी उन्हें उम्बतियो कस्तो तु दाना ने वो कसो उफनो दाना ने दिवनूना कसून उफना बरे होना को दिवनू ना कसाविया ईदे थादी थादी दिए वे तू इबलिए हो उन थबाय आते हो बरु गेदिया ने नाती उन बिडावे चाय ई ढनी बिकते हो की ई हो बुकना सिरा कोन काव ईदे मीना दिया अरे वे थादी थादी दिया ने नाते उन ओदोर उफना दाई ओड़ उशुमनी है ओदोर बेन ओदोर वी सही दोन इतफेरे इन यातायन वी सही ईदरे इन्हें

उधौन तुबड़ाऊ तेहेन मीनिक तिसनीनेना हेने नेना नेना एम बलिब निम्सोदेना उत्थादी तूकन दाय कत्य कत्येब का शिवो कत्य कत्येब का दावर कत्य कत्येब का उदय मिडिट एदना हेनिन दाई न सरी ओकना एम बलिब दी ओकना नेत अमसे मालो आदिम इंशाअल्लाह है तित्तमा आरिक इंग्लिश दिद्दीब तुबड़ाऊ सकता नेत बते मालो आदिम हो दिया नेत।